0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: नेपाल ऋण खप्पै बिमगाछ क्याल्बोलुम प्रविधि से शोभा अल्मोनियम कोटेल सादा थिन रंगीन जस्ता पाता हुलास जुरा कलर छ्यान भन्दा तीन गुना बढी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक थिन लानन टुबमुला
1: तीन गुना लाना टुला
0: हुलास मुसम अर्कुतिल दमाइसे।

0: मैं तुम्हें यहाँ रोज आते हुए देखता हूँ, अकेले किसी का इंतजार कर रही हो।
1: तुमसे मतलब? ओ शिट, आई एम गेटिंग लेट।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: बनाउले म आफ्ना बैरागले गाउँछु बैसाख बनाउले
1: काठे सागो चुनुक चुनुक जित्ता भड्कुनाले मेरा ताई पराया भया।

0: बादल आकाश आउँदो चट्ट्याङ चुटुङ झरी मेरा जैथा दुख काई नहीं सारा यसै भरी
1: आधार स्वर्ग धम्पानी छ आधार स्वर्ग बिदो मर्ने बाँच्ने

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: राशि अनुसार को पत्थर और अन्य पत्थर पाइन
1: कंप्यूटर तौल घर बिक्री कर साथ ही मेसिन द्वारा नाक कान छेड़
0: साथ ही सुनचारी संबंधी संपूर्ण काम
2: आकर्षक ज्वेलरी सुनचारी पसल बेसिसार नगरपालिका साथ त्रिवेणी टोल नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक संगे प्रोपराइटर प्रकाश विश्वकर्मा मोबाइल 9845656233 र 9801177246
3: आकर्षक तथा गुणस्तरीय गहना र शुद्धता को प्रतीक आकर्षक ज्वेलरी सुनचांदी पसल

0: अनि तयो कागज केमे छिन् वा?
1: अ झिल्काई
0: के पर्सनल नम्बर ब्लक लै बदी
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बे अफिसर आएर ब्लक लै र खलखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी
0: अ
1: सर चाहिँ तले लल्पर्दी
0: सम लल्पर्दी न आफै न मोबाइल नम्बर फेदिया बदी र ब्लक तयै बिषा आफै न बैंक दे बिनी जानकारी पिन परिम दे आफै न बैंक खातै न जानकारी अरुइ न योरी थोनी दक्या सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब्दक्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैंगर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।